आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से

नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय

संकल्प अभियान, अ नेशन वाइड 100-week जन भागीदारी मूवमेंट अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज ऑन संडे द 2nd of August. द कैंपेन विल बी लेड बाय माई भारत प्लेटफॉर्म, एन ऑनलाइन यूथ लीडरशिप एंड सोशल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म that aims to empower and engage youth to become leaders. The initiative seeks to unite young citizens in a collective national mission to build a drug-free India by promoting awareness, community engagement, and sustained public participation. In the United States, a man was convicted of federal terrorism charges in the 2022 stabbing of Salman Rushdie.

0: This news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 6:10 हुए हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आइए आरंभ करते हैं इस स्मरण से।

भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य बिंदुओं में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का

कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंता

नजरुल गीत, कलाकारा थी बागेश्री सरकार। इसके साथ ही संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:30 हुए हैं। ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। आज के इस गीतों भरे गुड मॉर्निंग में बहुत ही खूबसूरत गीतों की एक लड़ी लेकर मैं हूं आपका दोस्त चिरपरिचित मित्र नवीन सक्सेना। नमस्कार, स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर एक दूसरे का हाल पूछना भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कैसे हैं आप, बस यही बहुत बड़ा सुकून देता है। एक अपनापन, एक प्यार और एक खूबसूरत सा एहसास देता है कि दिन में कोई तो ऐसा है पूछने वाला जो जानते हैं क्या कहता है, वो ये कहता है।

0: को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: कभी कभी किसी की तारीफ करना और वो भी सीधी सच्ची तारीफ करना सीधा दिल में उतर जाती है। और कभी किसी को ये कह देना, देखो ना जो तुमको पसंद है ना वही चीजें मुझे भी पसंद है।

0: आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर

ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद

0: है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारे का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र

जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू

राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था

बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है

श्रावण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की

रुकने असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के सबब जिमनी चुनाव जरूरी हो गया था। इंतखाबी कमीशन ने 100% वेबकास्टिंग, पोलिंग मराकज के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने के काउंटर्स और ऑनलाइन जाब्ते अमल से मुतालिक शिकायतों के लिए सी विजिल सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को नाअहल करार दिए जाने के बाद दतिया सीट खाली हो गई थी। दतिया असेंबली हलके से चुनाव के लिए सभी 291 पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी इकदाम किए गए हैं और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की

0: से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हसब मामूल आमदोरफ्त उनकी आसानी और तहफ्फुज के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकाम पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क और जदीद मरबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदत मंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में ट्रैफिक को मुंतकिल करने से मुतालिक इंतजाम को नाफिज किया गया है ताकि कांवड़ियों और दीगर लोगों के बहिफाजत और खुश असलूबी से आने जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ की डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर ट्रैफिक मुंतकिल किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर

0: सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। गुहिरा अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: रेडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। ये केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: धन्यवाद सर।
2: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
3: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा हो।

0: ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं और सरकार कर रही है।
1: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप

0: कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: तो इसका मतलब हम ये समझें कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
0: कुछ काम बहुत आसान हो गया है, पर इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवर स्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर है कि एआई का मोमेंटम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो बहुत हाई है, और अब वही व्यक्ति सर्वाइव करेंगे जो एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एडवांटेजेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अगर ये कहेंगे मैं समय के बदलाव के साथ, एआई के साथ

0: दांगी जी, उसे समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है कि रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
1: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज की डेट में मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन मटेरियल मशीन मनी, पर
0: जी
1: आज की डेट में अब इसको मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है।

बहु न बोल, सबर कर, आहट लै, खुशबू सुंग, पैड चाल पाल, मुस्कनी मान, फुल, बाल, कविता, मोहब्बत इको गल है। कवि अनुसार मोहब्बत अते कविता कोई बाहरी रौला नहीं, बल्कि अंदरूनी सबर अते ठहरा दा ना है। राजीव सेठ निराशा दा कवि नहीं है, वह मनुखी सिरड़ दा हामी है। उसकी कविता सिरड़

0: और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया, स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मोदी

0: the auspicious beginning of the holy month of Shravan. India scripted history in para-athletics at the Commonwealth Games, securing a historic 1-2 finish in the men's 100 meters T47 final as Dilip Mahadu Gavit won the gold and Mohammad Basil claimed the silver. Gavit clocked a games record and season best time of 10.71 seconds to take the top spot, while Basil produced his season best 10.83 seconds. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10:10 हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई हूँ मैं अल्पना, और पता है आपके बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और आगे भी आप लोग लिख रहे होंगे, संदेशों को लेंगे, लेकिन मैं अल्पना और पता है आपके बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और आगे भी आप लोग लिख रहे होंगे, संदेशों को लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आवाज़ है लता मंगेशकर और उदित नारायण की, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है उत्तम सिंह का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं।

इसके अलावा हमारे साथ पूरा बयाल परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं हरिहरन की आवाज़ में। संदेश हम आपके यूं ही लेते रहेंगे।

अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीनी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर, अमनदीप और साहिल बजाज बिट्टा और शुभेंद्र कालका से हमारे साथ जुड़े हैं। और आप लिख रहे हैं, सावन के महीने में बारिश का मौसम होने के कारण वृक्षारोपण बहुत शुभ और सबसे अच्छा माना जाता है और जिससे पर्यावरण में हरियाली और संतुलन बना रहता है। मौसम के सुहावने होने पर घेवर, पुआ और मालपुआ जैसे पारंपरिक मीठे पकवान भी खाने को मिलते हैं जो आनंद देते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में बारिश का मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए पकौड़े, समोसे, चाय का आनंद लेने में और मज़ा आता है। और सावन के महीने में पतंगबाजी का क्रेज़ लोगों में बहुत जोश भर लेता है। आज भी सावन में पतंगबाजी के इस पुराने और रोमांचक शौक़ का आनंद लेते हैं। जी क्या बात है, देखिए यही तो होता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी बातें हमारे साथ साझा करते हैं तो हमें नई नई जानकारी भी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से आप अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी संदेश लेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यार भरा प्यारा सा गीत।

से अमृत की धार, झूम उठी धरती महका संसार। अमावट की रिमझिम छड़ी है भारी, भीग रही सावन में सखियां सारी। क्या बात है, बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ लिखी हैं। और आप जब इस तरह से हमें संदेश भेजते हैं, बार बार कहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला जो संदेश है ये है हमारे पास, ये जो संदेश भेज रहे हैं ये लिख रहे हैं, नमस्कार लिख रहे हैं हमें, और दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा रघुबीर नगर से लिख रहे हैं ये हमको। और इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा हमें लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि बहुत शिद्दत से हम कार्यक्रम सुनते हैं, गुजारिश है आपसे अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको याद रखते हैं और तभी तो हम आपके संदेशों को पढ़ते भी हैं। और इसके अलावा ये लिख रहे हैं शिषपाल वरदान, हमें संदेश भेज रहे हैं। और अगला जो हमें संदेश मिला है वो है रमेश चौहान जी का, और इनके साथ ये राजस्थान से संदेश भेज रहे हैं कपित

और साथ ही जो अगला संदेश हमें मिला है वो मिला है छत्रपति शिवाजी नगर खांडवा से। राजेश सेन जी हमें लिख रहे हैं, सावन के महीने में बेसन और ज्वार की रोटी और गर्मा गर्म चाय और प्याज के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अलग अलग जो जगह हैं अलग अलग चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर और अलग अलग टेस्ट होते हैं और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं आप लोग, तो कितनी अच्छी बात है। और अगले

और जी हाँ, अगला जो गीत है आपको ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले आपके संदेश भी हम ले लेते हैं। ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन हमारे साथ जुड़ी हुई शांति नगर सोनीपत से। इसके अलावा हमें संदेश भेज रहे हैं, देखिए बार बार एक ही संदेश होने से थोड़ा हम ले नहीं पाते हैं सारे संदेश। ये अगला जो संदेश है वो है राशिद हुसैन और अंसारी नौरीन आसना मोहम्मद कैफ का, और ये हमें कुरावली से संदेश भेज रहे हैं, और इसके साथ हमारे साथ

यहाँ सावन में ऐसे झूमते रहिए, गाते रहिए, और हम आपके प्यारे प्यारे संदेशों को यूं ही पढ़ते रहे, बस यूं ही सफर गुजर जाएगा। तो अगला जो संदेश है ये है श्री रामपुरापुर से है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश और जीविका का। पुणे से हमारे साथ जुड़े अजय, करिश्मा, अविका और विशाल, धन्यवाद भेज रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस नमस्कार हमें भेज रहे हैं। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा और रेखा देवी जी, जी आपको भी नमस्कार। और देखिए समय बहुत ही कम बचा है, और ये एक और हम संदेश ले लेते हैं कि अभी तक आपने नो रिस्पांस दिया है, और सावन में हमें घेवर खाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए तुलसी मुस्किन और वीना मुस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना जी और शाहदरा से, दिल्ली से, आप लोग जो ये लिख रहे हैं संदेश, हमने आपका संदेश पहले भी लिया है, और जी हाँ फिर से आपका हमने संदेश ले लिया है, और घेवर तो अच्छा लगता ही है, थैंक यू उसके लिए। और इसके अलावा कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद और शाह जहाँ बेगम और मरी

उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 4.61%, गुजरात के मंजलापुर सीट पर 6.06% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 12.94% मतदान की खबर है। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले

0: in a closely fought race. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार। आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण

सरकार से तबला वादन सीखा और CCRT द्वारा जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आपने प्राप्त की। इसके अलावा साहित्य कला परिषद नई दिल्ली द्वारा युवा स्कॉलरशिप से भी आपको नवाजा गया है। 10 वर्ष की आयु से आपने पंडित SL कंडारा से वायलिन का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इसके पश्चात प्रसिद्ध संतूर वादक पद्मश्री अलंकृत पंडित भजन सोपोरी से वायलिन की शिक्षा ली। वर्तमान समय में प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक

पंडित तरुण भट्टाचार्य, पंडित रितेश एवं पंडित रजनीश मिश्रा जैसे सुप्रसिद्ध संगीतकारों के साथ आपने मंच साझा किया है, प्रस्तुतियां दी हैं। ताज महोत्सव, G20 के आयोजन, पल्स म्यूजिक फेस्टिवल, ध्वनि फेस्टिवल, युवा संगीत महोत्सव जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में आप प्रस्तुतियां देते आए हैं। आपने विदेशों में भी विशिष्ट अवसरों पर अपनी वायलिन वादन की प्रस्तुति दी है। दुशांबे में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास के कार्यक्रमों में भी आपने शानदार प्रस्तुति दी। आप आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार हैं और दूरदर्शन पर भी कई बार आप प्रस्तुतियां दे चुके हैं। वायलिन वादन

आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में आज शुभम सरकार ने वायलिन वादन की प्रस्तुति दी। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर प्रदीप कुमार सरकार, तानपुरे पर शिवम नायक। इस कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से लिया गया, जिसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया प्रकाश थपलियाल, मनीष आनंद और सुनील कुमार ने। हमारे सभी साथियों के लिए करतल ध्वनि। प्रस्तुति सहयोग था विशाल, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव।

मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है।

यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमें जोड़ता है आपसे, जहाँ होती हैं ढेर सारी बातें। तो आज भी हमारे घर आंगन कार्यक्रम में है बहुत कुछ खास, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

के महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण करेंगे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सावन यानी श्रावण मास की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

अभी इस फिल्म में आपने ये गीत का जो गीत सुना और आवाज़ थी वाणी जयराम की। और श्रोताओं, देखिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की, जो मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी या गिरवी के पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ऋण और ब्याज पर छूट प्रदान करती है। श्रोताओं, योजना की मुख्य विशेषता ये है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना किसी कोलैटरल या गारंटर के शिक्षा ऋण मिलता है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट दी जाती है, और 7.5 लाख तक के ऋण पर सरकार बैंकों को 75% क्रेडिट गारंटी देती है। आवेदन के लिए छात्र पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ये लाभ भारत के लगभग 860 उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो अगर आपका सपना है अपने बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में भेजने का, तो इस योजना से आप लाभान्वित हो सकते हैं और अपने बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी गाइड। और अब बात हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई। तो महिलाएं घर परिवार की धुरी होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। ऐसे में महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, कि बाहर का काम है, घर का काम है, सुबह भाग भाग कर काम करना। तो जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की पहचान है, और ऐसे में जब जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा

0: नामांकन है कि अंतिम तिथि से पिछले 2 वर्षों के भीतर का होना चाहिए। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस पुरस्कार का आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और इस वर्ष नामांकन की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2026 यानी कि कल तक है। तो अगर आपका बच्चा या आपके आसपास किसी ऐसे कोई बच्चा है जिसने कोई बहुत ही अच्छा काम करा और आपको लगता है कि वो भी इस पुरस्कार का हकदार हो सकता है, तो आपके पास आज का और कल का समय है, आप उसको वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं।
1: मन के साथ।

और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस

प्रश्न सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम रेट 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में समय हुआ है 1:10 और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

की धड़कनें बढ़ा देती हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने बोल्डनेस, सस्पेंस और म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी थी। भटकैंप की आइकॉनिक फिल्म, जी हां, मर्डर। एक अधूरी शादी, एक पुराना प्यार और एक गलत कदम जो ले जाता है एक ऐसे मोड़ पर जहां से

श्रोताओं, दिन के 1:10 हो रहे हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है, पर इस खामोशी के पीछे छिपे हैं एक ऐसे राज जिसने 2004 में पूरे देश के दिलों

0: पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वहीं दूसरी तरफ सुधीर को अपनी पत्नी के बदले हुए बर्ताव पर शक होने लगा। वो एक निजी जासूस को सिमरन के पीछे लगा देता है। सिमरन एक तरफ अपने पति के शक से डर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी की सनक से। दिल में खौफ है, लेकिन बाहर मुस्कुराने की मजबूरी। इसी कश्मकश को बयां करता है ये गाना।